होए निज कर वसै सह सुभाए गुरमुख नाम वसै मन आए आपे वेखै वेखणहार नानक नाम रखो रुतार पहरो महला तीजा कल युग में राम नाम ओर तार बिन नावै माथे पावै शार राम नाम दुलभ है भाई गुरप्रसाद वसै मन आई रहाओ राम नाम जन पालै सोए पूरे गुरते प्राप्त होए हर का पाणा मन्नै से जन परवान गुर कै शब्द नाम निशान सो सेवहो जो कर रहया तार नानक गुरमुख नाम प्यार तहरो महला तीजा कल युग में बो कर्म कमाहे ना रुत ना कर्म थाए पाहे कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगै प्यार रहाओ तन मन खोज कर मैं पाया गुरमुख राम नाम चित लाया ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रहया ते हो लोए कल युग में हर जियो एक होर रुत ना काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लिहो जमाई पहरो महला तीजा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद दुबदा मन मुख रोग व्यापे तृष्णा जलै अधकाई मर मर जमै ठौर ना पावै बिरथा जन्म गवाई मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई हम मैं रोगी जगतो पाया बिन शब्द रोग न जाई रहाओ सिमरत शास्त्र पढ़े मुन केते बिन शब्द सुरत ना पाई त्रै गुण सबे रोग व्यापे ममता सुरत गवाई एक आपे काढ ले प्रव आपे गुरसेवा प्रभ लाए हर का नाम निधानो पाया सुख वस्या मन आए चौथी पदवी गुरमुख वरतै तिन्निज करवासा पाया पूरे सतगुर कृपा किन्नी विचों आप गवाया एक सकी सरकार एक जिन ब्रह्मा बिसन रुद्रो पाया नानक निचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया पहरो महला तीजा मनमुख दुखदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझै रोग गवावै गुरसबदी विचारा हर जियो सतसंगत में लाए नानक तिसनो देवड़ियाई जो राम नाम चित लाए रहाओ ममता काल सब रोग व्यापे तिन जमकी है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेण ना आवै जिन हर राख्या और तारा जिन हर का नाम ना गुरमुख जाता से जग में काहे आया गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए जो इच्छा सोई फल पावै गुरबाणी सुख पाए पहरो महला तीजा दुख विच जमै दुख मरै दुख विच कार कमाए गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै बिष्टा माए समाए त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेव ना कीनी हर का नाम ना पाया रहाओ गुर का शब्द सब रोग गवाए जिसनो हर जियो लाए नामे नाम मिलै वड़ियाई जिसनो मन वसाए सतगुर भेटै ता फल पाए सच करनी सुखसार से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरह प्यार तिन की रेण मिलै ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया नानक तिन की रेण पूरे भाग पाईऐ जिनी राम नाम चित लाया पहरो महला तीजा शब्द विचारे सोजन साचा जिन कै हृदय साचा सोई साची भगत करै दिन राती तां तन दुख न होई भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत न पाई है पूरे भाग मिलै प्रभ सोई रहाओ मनमुख मूल गवावै लाभ मांगै लाहा लाभ किदू होई जम काल सदा है सिरी उपर दूजै पाए पत खोई बहले पेख पवै दिन राती हम मैं रोग न जाई पड़ पड़ लू